0: SBS, a world of difference. You're with SBS Punjabi on mobile, online, and on radio.
1: ਤੁਸੀਂ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋ।
2: SBS ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਟਿੰਗਰਾ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ SBS ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ? ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ, ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 25 ਜੂਨ 2026। आओ प्रोग्राम दी शुरुआत विच याद कर लेने हां उन्हां लोकां नूं जो इस जमीन दे असल मालक ने। असी उन्हां सारे रवायती मालकां नूं मान दिंदे हां जिन्हां दी धरती तों असी अज दा इह प्रोग्राम पेश कर रहे हां। पंजाबी प्रोग्राम कुलीन राष्ट्र दे वरुंजरी वोई वरुंग लोकां अते उन्हां दे बजुर्गां दीआं मौजूदा अते पुराणीआं पुश्तां नूं सत्कार दिंदा है। असी आदिवासी अते टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर जमीना दे उन्हां सारे रवायती मालकां नूं वी अपना सत्कार पेश करदे हां जिथों तुसी अज दा साडा इह प्रोग्राम सुन रहे हो। चलदे प्रोग्राम दौरान तुसी मैनूं मैसेज भेज सकते हो 0439-799-767 ते, यानी कि 0439-799-767 ते अपने नाम दे नाल। आओ सब तो पहला गल करदे हां अज दे साडे प्रोग्राम बारे कि अज दे शो दे विच की कुछ होवेगा खास। सब तो पहला देश दुनिया अते पंजाब तो खबरसार, फिर गलबात करांगे फीफा वर्ल्ड कप दी, नाल दी नाल रिपोर्ट विच दसांगे कि आस्ट्रेलिया विच नशियां दी ओवरडोज कारण होण वालियां मौतां रिकॉर्ड पद्धर ते पहुंच गईयां ने। दुनिया भर विच वसदे पंजाबियां नाल जुड़ियां खबरां वी जाणांगे पंजाबी डायस्पोरा दे विच। इंटरव्यू सैगमेंट दे विच गल करवावांगे शैप्टन विच न्यू चंडीगढ़ फार्म चलाउण वाले किसान गुरिंदर सिंह दे नाल, जिन्हां ने कोविड दौरान नौकरी गुआउण तों बाद इत्थे फार्म खरीद लिया सी अते इह हुण उगाउंदे ने कई तरह दे फल। इन्हां दी संघर्ष अते सफलता दी कहानी जाणांगे। नाल दी नाल शो विच चलणगे पंजाबी गीत वी अते तुसी वी दिओ मेरा साथ अते कर दिओ मैसेज 0439-799-767 ते अपने नाम दे नाल। फिलहाल आओ चलदे हां अज दीआं खास खबरां वल।

0: SBS ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਬਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ 25 ਜੂਨ 2026 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਟਿੰਗਰਾ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। वेनेजुएला विच लगातार आए ताकतवर भूचाल ने भारी तबाही मचाई है, जिस कारण राजधानी काराकास विच कई इमारतां ढह गई ने। अमरीकी भू विज्ञान सर्वेखण यानी US जियोलॉजिकल सर्वे अनुसार इन्हां भूचालों की तीव्रता क्रमवार 7.1 और 7.5 दर्ज की गई है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि वड्डी गिणती दे विच जानी नुकसान और व्यापक तबाही होने की संभावना है। एमरजेंसी टीमां ढह चुकियां इमारतों विच फसे लोगों की भाल कर रही ने, जबकि संभावित झटकों के डर कारण बहुत सारे वसनीक अजे भी सड़कों ते ही मौजूद ने। अधिकारियों ने लोगों को अपील की है कि वह नुकसानियां गई इमारतों तो दूर रहन, जदों की बचाव कार्य अजे भी जारी ने।
1: A seismic event has occurred. We have buildings, homes and houses which have collapsed, and we are taking care of things with everything we have available in terms of security, civil assistance. No one should stay inside buildings because this kind of event is usually followed by aftershocks.
2: The replica.
0: सीरिया विच फसी हुई इस्लामिक स्टेट नाल संबंधित आखिरी ऑस्ट्रेलियाई महिला नूं हुण ऑस्ट्रेलिया वापस आउण दी इजाजत दित्ती जाएगी। गृह मंत्री टोनी बर्ग दा कहना है कि महिला वल्लों वापसी परमिट दी बेनती कीते जाण तों बाद सरकार हुण अस्थाई बेदखली हुकम यानी टैंपरेरी एक्सकलूजन ऑर्डर नूं लागू नहीं रख सकती। ऑस्ट्रेलिया वापसी उपरंत महिला अते उसदे बच्चे ते सख्त निगरानी रखी जाएगी। इस तहत उस नूं अपने रहन, काम करन अते पढ़ाई करन वाले स्थानां दी जानकारी देनी होवेगी अते किसे भी फोन या सोशल मीडिया दी वरतों तों 24 घंटे पहला सूचना देनी पवेगी। एजियो दे डायरेक्टर जनरल माइक बर्गिस ने कहा कि उन्हां दी एजेंसी पूरी तरह तैयार है और महिला दे ऑस्ट्रेलिया परतण ते अपने सारे कानूनी अधिकारां दी वरतों करेगी। ब्रिस्बेन फ्लैटा या यूनिटा के मामले में सिडनी को पछाड़ के ऑस्ट्रेलिया का सब तो महंगा शहर बनने की राह है। डोमेन के नवे अंकड़े मुताबिक यह भविखबाणी की गई है कि 2027 तक ब्रिस्बेन के एक यूनिट की औसत कीमत 9% तो वध के लगभग $8,93,000 तक हो सकती है। यह कीमत इसनों सिडनी नालों भी अगे कर देवेगी, जिथे औसत यूनिट दीमत $8,55,000 तो वध ना होने का अनुमान है। डोमेन का कहना है कि तेजी वध रही आबादी, निवेशकों की मांग किराए के मकानों की भारी किल्लत इस बदलाव के मुख्य कारण ने। दुनिया की सब तो मशहूर एनीमेटेड कार्टून लड़ी ब्लोई का पहली बार एक ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। इस साल के नाइडोक वीक के मौके इस लड़ी के 5 एपीसोड्स नू योलन गू मूतू भाषा में डब किया जाएगा। इन एपीसोड्स नू उत्तर पूर्वी आरन हैमलैंड के भाषा बोलने वालों वालों मुड़ आवाज दी गई है, जबकि स्थानक बच्चों ने ब्लूई और बिंगो के किरदारों लिए अपन आवाजा दिखाई ने। एक खास एपीसोड 5 जुलाई तो नाइडोक हफ्ते दौरान प्रसारित किए जाएंगे और इस साल के गारमा फैसटिवल भी दिखाए जाएंगे। आखिरी खबर पंजाब तो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विवादित वीडियो के मामले में विरोधी धिरां के हमलों तो बाद जवाब दिता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया से वीडियो राही संबोधन करदिया कहा कि पंजाब सरकार वालों सूबे दे विच लोक पक्षी काम किए जा रहे हैं। इन्हों कामों के आधार पर भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस उन्हों का मुकाबला करन विच असमर्थ है। इसलिए विरोधी धिरां वालों एकजुट होकर धर्म के नाते बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि विरोधी धिरां ने फर्जी वीडियो बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वो अंतिम फैसला पंजाब के लोगों पर छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की शरीरक दिख, कद, चलन और विचरण का तरीका किसी भी पक्षों उन्हां नाल मेल नहीं खांदा। उधर पंजाब कांग्रेस ने अकाल तख्त के हुक्मां के हवाले नाल विवादित वीडियो के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान तो अस्तीफे की मांग की है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगवाई हेठ कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने समूहिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवादित वीडियो मामले में मुख्यमंत्री की घेराबंदी की। उन्होंने नवे बेअदबी विरुद्ध कानून तहत मुख्यमंत्री से केस दर्ज करने की मांग की है। पार्टी आगुआ ने अकाल तख्त को गलत साबित करने लिए झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों भी बर्खास्त करने की मांग की है। फिलहाल अज के खबरनामे विच इन्ना ही। होर जानकारी अते खबरां लई जुड़े रहो SBS पंजाबी दे नाल। खबरों तो बाद स्वागत है जी एक बार फिर तो SBS के पंजाबी रेडियो प्रोग्राम दे विच। मैं हाँ पुनीत ढींगरा तो हाडे नाल। समय नूं कर दिओ मैसेज 0439799767 ते की कर रहे हो, की हाल चाल है, किवें चल रहा वीरवार दा दिन, की खास करने इस वीकेंड, ये सारा कुछ दसो। फिलहाल तुहानूं फटाफट अंदाज दे विच फीफा दा 13वें दिन दा डेली रीकैप सुणाउंदे आ कि कल दे दिन किहड़े किहड़े मैच होए अते अगे सॉकर रूज दा की बन रहा है, ते उस तों बाद आके पढ़दे हां जी तुहाडे सुनेहे।

0: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ले एक नवा रिकॉर्ड। रोनाल्डो बने 6 वर्ल्ड कप्पा विच गोल करन वाले पहले खिडारी। लुका मॉडिच ले एक वड्डा मील पत्थर अते इंग्लैंड ले निराशा। फीफा वर्ल्ड कप दिया मुख सरगर्मिया दे नाल विश्व कप डेली अपडेट विच तुहाडा स्वागत है। SBS पंजाबी तो मैं सुमित कौर ते पेश है फीफा 2026 दे 13वें दिन दा स्पोर्ट्स रैप। पोर्चुगल ने 13वें दिन की शुरुआत शानदार अंदाज विच कीती अते ग्रुप के विच उज़्बेकिस्तान नू 5-0 नाल हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल कीते जिस दे नाल ओ 6 वख-वख वर्ल्ड कप्पा विच गोल करन वाले पहले खिडारी बन गए हन। 41 साल दी उम्र विच पोर्चुगल दे कप्तान रोनाल्डो टूर्नामेंट दे इतिहास विच गोल करन वाले दूजे सब तो वड्डी उम्र दे खिडारी भी बन गए हन। ग्रुप के दे दूजे मुकाबले विच कोलंबिया ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो नू 1-0 नाल हराया। जेतू गोल मैच दे 76वें मिंट विच कीता गया। इस जीत नाल कोलंबिया ग्रुप विच शिखर ते पहुंच गया है अते राउंड ऑफ 32 विच अपनी जगह पक्की कर ली है। उधर ग्रुप एल विच इंग्लैंड नू घाना विरुद्ध 0-0 दे ड्रॉ नाल संतुष्ट होना पिया। हालांकि बॉल ते कब्जा अते मौके बनाउण विच इंग्लैंड दा पलड़ा भारी रहा। इस नतीजे तो बाद दोवें टीमां दी नॉकआउट पड़ाव विच पहुंचण दी उम्मीद हुण अपने आखिरी ग्रुप मैचां ते निर्भर करेगी। ग्रुप एल दे दूजे मुकाबले विच क्रोएशिया ने पनामा नू 1-0 नाल हरा के टूर्नामेंट तो बाहर कर दिता। बदलवे खिडारी आंते बुदिमीर ने जेतू गोल कीता जबकि कप्तान लुका मॉडरिच ने अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेडिया अते ए उपलब्धि हासिल करन वाले 4थे पुरुष फुटबॉलर बने। हुण गल करदे हां सोक्रूज दी। शुक्रवार नू पैराग्वे विरुद्ध होण वाले अहम मुकाबले तो पहला आस्ट्रेलिया नू झटका लग्या है। सहायक कोच पॉल ओकन ने पुष्टि की है कि तजर्बेकार विंगर मैथ्यू लैकी सट कारण मैच तो बाहर हो गए
1: हैं।
0: सोक्रूज नू नॉकआउट पड़ाव विच जगह बनाउण लई सिर्फ एक ड्रॉ दी लोड़ है। ओकन ने मजाकिया अंदाज विच ए भी कहा कि ओ उम्मीद कर रहे सन कि प्रधानमंत्री आस्ट्रेलियाई लोकां नू छुट्टी दे देण तां जो हर कोई आसानी नाल मैच वेख सके।
1: Our Prime Minister, Mr. Albanese, would give everyone a day off so people didn't need to scramble to find a TV set wherever they can to watch it.
0: अते तुसी सोक्रूज अते पैराग्वे दरमियान ए मुकाबला SBS अते SBS ऑन डिमांड ते दोपहर 12 बजे ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ते लाइव देख सकते हो। तुसी सुन रहे सी फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे 13वें दिन दी डेली अपडेट। SBS पंजाबी तो मैं सुमित कौर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे हर पल नू लाइव अते मुफ्त SBS अते SBS ऑन डिमांड ते जरूर वेखो।
2: बिल्कुल जी। सो कल दोपहर 12 बजे ऑस्ट्रेलिया यानी कि सोक्रूज का मुकाबला शुरू हो जाएगा। की लगता फिर करेगी साड़ी टीम ड्रॉ या जितेगी तो पहुंचेगी अगली यानी कि नॉकआउट स्टेज दे विच या फिर नहीं अभी तुसी दस सकते हो। वैसे अज के मुकाबले की गलबात करिए साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया नू हरा दिता है। चेकिया हार गई है जी मैक्सीको के हथों। ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड नू हरा दिता। मोरक्को ने मात दी हाइती नू। इधर बोस्निया ने कतर नू मात दी है ते स्विट्जरलैंड ने हरा दिता है कैनेडा नू। अगर नॉकआउट स्टेज की गलबात करिए एक मुकाबला पूरा डिसाइड हो चुका जी जो 29 जून नू साउथ अफ्रीका ते कैनेडा विचकार खेडिया जाएगा। बाकी जर्मनी USA ब्राज़ील मैक्सिको स्विट्जरलैंड अर्जेंटीना ये टीमां नॉकआउट स्टेजेस दे विच पहुंच चुकिया ने। सो देखते हैं कि बाकी होर केड़ियां टीमां इत्थे तक पहुंचदियां ने। अगर गोल्स की गलबात करिए यानी कि गोल्डन बूट की रेस दे विच सब तो अगे लियोनल मैसी ने जिन्हां ने टूर्नामेंट दे विच 5 गोल किए ने। दूजे नंबर पर है जी नॉर्वे दे एरलिंग हालैंड जिन्हां ने 4 गोल किए ने अते नाल दी नाल इसे पोजिशन के उत्ते फ्रांस के किलियान एम्बापे भी ने इन्हां भी 4 गोल ही किए ने। क्रिकेट की गलबात करिए ICC वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जिस विच भारतीय महिला टीम का अज राती साढ़े मेलबर्न अते सिडनी समय के अनुसार 11:30 बजे राती मुकाबला होगा बंगलादेश वूमेन टीम के नाल। तुसीं ये भी फॉलो कर रहे हो तो जरूर जरूर दस सकते हो। कोई देखी हो नवी वैब सीरीज या फिर फिल्म कोई रिकमेंड करना चाहते हो यह भी दस सकते हो। इधर सानू मैसेज आ चुका है जी कह रहे हैं सत श्री अकाल पुनीत वीर जी की हाल चाल ने तुहाडे। मैं बहुत वधिया जी तुहाडे की हाल चाल ने। अमृत जी मैसेज करते हैं बहुत बहुत ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਓ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੈਪਟਨ ਤੋਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਪਟਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
3: ਤੁਸੀਂ ਹੋ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।
4: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ MP ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਿੰਗਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਇਕੱਲਾਪਣ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ਾ ਮੂ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
5: You don't think it would happen to you, and then I have overdosed a lot. I have overdosed so much that I have 2 permanent cysts on my brain from all the overdosing that I've done.
4: ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਧਾਰਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
5: Somebody's always dying, you know what I mean? It's sort of even become like a little bit, like you get a little bit used to it, which is so sad to say, you know.
4: Pennington Institute de CEO John Ryan anusar,
6: well, we're seeing double the number of people dying from overdose than what are dying on the road toll from the road toll, and so the scale of the problem is huge, and it's affecting people from all parts of the country and from all age groups and all socioeconomic backgrounds.
4: ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਓਇਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਥਐਂਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
7: We are seeing rising harms related to stimulants such as methamphetamine and cocaine. Globally, we're seeing rising availability of these substances. And in Australia, we're seeing reports of rising use of these substances. And

0: कर रहे नहीं। SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करो या
1: sbs.com.au/audio।
2: वेलकम बैक जी, स्वागत है एक बार फिर तो SBS पंजाबी दे इस छोटी जे कमर्शियल वक्फे तो बाद। मैं हाँ पुनीत निंगरा। सो आओ हुण लै चलदे हां दुनिया वाले पासे, घुमाउंदे हां तुहानू अलग अलग देश अते करदे हां गल्लां बातां दुनिया विच वसदे पंजाबियां नाल जुड़ियां खबरां दियां।
3: SBS पंजाबी दे स्रोतियां नू न्यूजीलैंड तों परमिंदर सिंह पापा टोयटोए वल्लों सत श्री अकाल पहुंचे। कौमांतरी खबर सार दे इस बुलेटिन विच आप सारयां नू निघी जी आयां नू। पहला पेश ने अज दियां मुख खबरां। न्यूजीलैंड विच सर्दियां दी रुत विच वी पाणी नाल जुड़ियां घटनावां दे दौरान दो पंजाबियां दी होई मौत। चढ़दे पंजाब तों लहिंदे पंजाब नू श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों श्रद्धालुआं दा जथा एक बार फिर यात्रा करेगा। भारत की महिला हाकी टीम ने न्यूजीलैंड नूं 2-0 नाल हरा के नेशनज कप का खिताब जितया। लंडन विच पंजाबी हथों पंजाबी का दर्दनाक कतल। विश्व कप फुटबाल दे विच न्यूजीलैंड की टीम दूसरे मैच विच मिस्र हथों हारी। उगे गायक दिलजीत दुसांझ ने फिर तो पंजाबियों का नाम किया रोशन अते आखिर विच कुछ रंग शायरी दे। न्यूजीलैंड विच गर्मियों की रुत्ते अक्सर पानी विच डुब जाण कारण बहुत सारे भारतीय विद्यार्थियों या प्रवासियों की जान चली जाण दे सुनेहे मिलते हैं। इस तरह के दर्दनाक खबरों के वेरवे पिछले 10 दिन दौरान उत्तरी आईलैंड के अते फिर दक्षणी आईलैंड के इलाकों तो मिले ने। पहला वैनामू झील दे विच शुभम कुमार दे 23 साल व्यक्ति वजो डुब जाण की खबर की पुलिस वालों पुष्टि हुई है। उस तो बाद फिर दक्षणी आईलैंड के प्रमुख इलाके लेक टकेपू विच बलदीप सिंह नां दे एक पंजाबी नौजवान की डुब जाण कारण मौत के समाचार मिले ने। याद रहे न्यूजीलैंड विच पहला ही इन्हां आंकड़ों तो परेशान पुलिस अते पानी की सुरक्षा नाल जुड़िया एजेंसियां जागरूकता भरिया मुहिम काम कर रही ने। इस बावजूद इन्हां घटनावां दे रुकण दा आसार नज़र नहीं आ रहा। सरकारी अते गैर सरकारी एजेंसियां दा मनना है कि नवे आने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों प्रवासियों अते कर्मचारियों नू न्यूजीलैंड दीआं झीलां दरियावां अते समुद्री तटां दे खतरियां बारे पूरी जानकारी ना होण कारण वार वार अजिहा हो रहा है, जिस दे लई धार्मिक अते समाजिक अदारियां नू वी अपना बनदा रोल निभाउणा पवेगा। उधर पंजाबियों दे दूजे वड्डे घर कैनेडा तों अहम खबर सामने आई है, जिथे कि डरहम रीजनल पुलिस ने लग्जरी घरां विच चोरियां करन वाले अंतरराष्ट्री गिरोह का पर्दाफाश किया। करीब 5000 घंटे की लंबी जांच वाले प्रोजैक्ट जैट सेंटर के इस ऑपरेशन के तहत क्रिमिनल टूरिज्म नाल जुड़े 46 मुलजमान नूं हुण तक गिरफ़्तार किया गया, जिस दे विच वड्डी गिणती विच पंजाबी चेहरे नज़र आ रहे हैं। इस पंजाबी गिरोह ने इकले डरहम इलाके विच 2.61 मिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब 17.77 करोड़ भारतीय रुपए की कीमत का समान लुटिया। पुलिस ने छापेमारी दौरान इन्हां मुलजमान कोलों इस विचों बहुता समान बरामद कर लिया है। याद करा दईए कि टोरोंटो के ग्रेटर एरिए दे विच पंजाबियों के घरां नूं ही इन्हां वल्लों निशाने ते लिया गया। तो उधर खबर है कि चढ़ते पंजाब तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई हेठां शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह होरां दी बरसी के मौके पाकिस्तान यानी कि लहिंदे पंजाब विखे हो रहे समागमां दे विच शमूलियत करन लई सिख श्रद्धालुआं दा जथा खालसाई जकारियां दी गूंज दे विच रवाना होया। मुख दफ्तर तों जथे दी रवानगी मौके यह जानकारी दित्ती गई कि इस वार 302 श्रद्धालुआं नूं वीजे दे के यह सहूलियत दित्ती गई है। इत्थे जिक्रयोग है कि जिथे वक्त समय के उत्ते पहलां 5वें पातशाह की शहीदी समागम मौके तो फिर शेरे पंजाब के इस समागम के निमित्त बहुते श्रद्धालु पाकिस्तान जा रहे हैं, पर श्री करतारपुर साहिब के लांघे नूं लै के हाले भी असमंजस बनिया होया है। तो इधर खुशखबर सांझी कर लईए कि भारत तो इन्हीं दिनी औरतों की हाकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे उत्ते पहुंची है, जिस दौरान उन्होंने नेशनज कप का खिताब जितया। उन्हें एक शानदार मैच में न्यूजीलैंड नूं 2-0 नाल मात दित्ती, जिस दे विच पंजाबन मुटियार नवनीत कौर का किया गया एक गोल भी शामिल है। याद करवाना चाहांगे कि भारत तो 1926 के वरे दौरान हुण तो 100 साल पहला भारत की हॉकी टीम ने इत्थे सफर किया, शानदार कारकरदगी दिखाई जिस दे विच मेजर ध्यान चंद वर्गे महान खिडारी भी शामिल सन। याद रहे उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के बहुते पंजाबी सिपाही उस टीम दे विच शामिल सन जिस की 100वीं वरेगंढ मनाउंदिआं न्यूजीलैंड की सरकार ने भारतीय औरतों की हाकी टीम नूं इत्थे खेडण का सद्दा पत्र दिता सी। तो उधर लंडन तो बुरी खबर है जिथे एक पंजाबी मूल के नौजवान ने एक दूसरे पंजाबी नौजवान यानी गुरप्रीत सिंह नूं चाकू मार के हलाक कर दिता। मैट्रोपोलिटन पुलिस के अनुसार नवजोत सिंह ने गुरप्रीत सिंह का कतल इरादापूर्वक गंभीर सट्टा पहुँचाने के नाल अंजाम दिता। यह दुखदायी घटना साउथहॉल के नॉर्थ रोड से वापरी जिथे कि वड्डी गिणती च एशियन लोग वसदे ने। तो उधर विश्व कप फुटबाल विच जिथे न्यूजीलैंड ने ईरान के नाल पहला मैच 2-2 की बराबरी से खेडिया अते भारतीय मूल के पंजाबी नौजवान सरप्रीत सिंह जर्सी नंबर 10 पा के खेड मैदान का शिंगार बनिया। उते बीते दिन हुए विश्व कप फुटबाल के दूसरे मैच दौरान वैनकूवर विखे इजिप्ट यानी मिस्र तो न्यूजीलैंड की ऑल वाइट्स टीम नू 3-1 दे नाल हार का सामना करना पिया। याद करवाना चाहांगे तीसरा अते आखिरी सब तो मुश्किल मुकाबला विश्व की दिग्गज टीम बेलजियम दे नाल न्यूजीलैंड वालों शनिवार यानी 27 जून खेडिया जाना है। इधर यह भी जानकारी दे दिए कि उगे पंजाबी गायक अते अदाकार दिलजीत दोसांझ दे नां उते अमरीका विच 6 जनवरी वाले दिन नू दिलजीत दोसांझ डे दे तौर ते मनाया जाना है। इसकी जानकारी कौंसल वूमेन मोनिका रॉड्रिग्स होना वालों दी गई है। ये वो दिन ने जिथे दिलजीत दोसांझ गर्म ख्याली जथेबंदियों के निशाने उत्ते है। अते आखिर विच मालवे दे जाने पछाने नगर कोटकपूरा दे जम्मे पले रजिंद्रजीत सिंह जो कि इन्हीं दिनी वलायत जा वसे ने उन्हां दा अंदाज हाजर है। बकाया मेरी हर धड़कण दा मेरे वल निकलदा है, अजे तां वक्त दा पहिया मेरी छाती ते चलदा है। ਉਹ ਜਾਂ ਝੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਰੋਜ਼ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖੰਜਰ ਵਕਤ ਦਾ ਸੱਚੀ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। SBS ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
2: क्या बात है जी, जो ये करते ने अपने सैक्शन का अंत शायरी के नाल बहुत कमाल की होंगी है और आस करते हैं कि तुहानू भी ये 17 कुछ पसंद आईया हो। इधर मैसेज आ चुका है सानू सिमरन जी का विक्टोरिया पैकनम तो कह रहे हैं सत श्री अकाल पुनीत जी, आई होप कि तुसी ठीक होवोंगे। कह रहे यार अज कनेडा हार गया यानी कैनेडा हार गया, कह रहे नॉट गुड क्योंकि इन्होंने पिछला मैच बहुत वधिया खेडिया से। बिल्कुल जी, देखते हैं हुण की बनता है और ये भी नाल कह रहे हैं देखते हैं बाकी सॉकर उस दा की बनता। बिल्कुल जी, आस तो यही है कि जित जाण या फिर ड्रॉ कर देण ताकि नॉकआउट स्टेज दे तक तां पहुंचण। तुहाडा की ख्याल है ये भी दस्यो। नाल दी नाल देखी तुसी नवीं वैब सीरीज़ राख जिहदे काफ़ी चर्चे ने, प्राइम वीडियो तो चल रही है, अगर किसी ने देखी हो रिव्यूज़ ने जरूर दस्यो। रमन सिंह जी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड ईवनिंग पुनीत जी, कह रहे हैं बहुत मजा आया तुहाडी आवाज़ सुन के, कह रहे ने फुल फन हो जाता स्टार्ट ऑफ द वीकेंड वालू जो तुहाडा प्रोग्राम आता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इधर अमर शोकर जी कह रहे हैं गुड ईवनिंग पुनीत साहब, नाइस शो, कीप इट अप। शुक्रिया अमर शोकर जी। आओ सुनाने जी एक बहुत कमाल का गाना और अज पुराने पुराने गाने चलावे आप, ठीक है जी, करते रहो इंजॉय SBS पंजाबी। मैं हाँ पुनीत ढींगरा तुहाडे नाल।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज है 25 जून 2026 की शाम, घड़ी में 5 बज चुके हैं और वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों और अहम अपडेट्स पर नजर डालने का. मैं हूं आपकी होस्ट भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईहुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के हर कोने से SBS हिंदी सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार. आप सुन रहे हैं एक और नया, ताजा और बेहद खास शो जहां होंगी बड़ी खबरें, गहरी बातें और समुदाय की असली आवाज. सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया की हलचल पर. अमेरिका में सीनेट में वॉर पावर बिल्स पास हो गया है जिसके बाद अब ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. इसी पर आज एक खास रिपोर्ट आप तक लेकर आऊंगी. दोस्तों, लोवी इंस्टीट्यूट के नए सर्वे में एक अहम सवाल खड़ा किया है. क्या ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चरलिज्म के समर्थन में कमी आ रही है या नहीं? इसी को समझने के लिए हमने बात की कृष्ण देव सिंह रावल जी से जो थर्ड कल्चर ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक हैं, एक ऐसी संस्था जो एंटी रेसिज्म वर्कशॉप्स के जरिए समाज में समझ और सुझाव बढ़ाने का काम करती है. आखिर इस बदलाव के पीछे क्या वजह है ये भी जानेंगे आज के कार्यक्रम में. और इसके बाद आज आपको लेके जाऊंगी मेलबर्न की रचनात्मक दुनिया में जहाँ रंगमंच सिर्फ मंच नहीं एक एक्सपीरियंस यानी अनुभव है. नाट्य दर्पण इंडियन थिएटर एकेडमी एक ऐसा भारतीय थिएटर ग्रुप है जो कहानियों को सिर्फ दिखाता नहीं है, उन्हें जीता है. यहाँ हर मंचन एक जीवंत दुनिया है जहाँ अभिनय, संगीत, रोशनी, आवाज और सबसे ऊपर भावनाओं की सच्चाई दिखाई देती है. और इसी के उपलक्ष में आज हम इस थिएटर से जुड़े दो लोगों को आपसे मिलवाएंगे और जानेंगे कि असल में क्या सच में आज के दौर में थिएटर जिंदा रह सकता है या नहीं. और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं थिएटर की, तो आज का जो सवाल है वो भी इसी से जुड़ा रहेगा. आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये कौन सी मूवी है. आपको हल्का सा बता देती हूँ, तो ये कहानी है थिएटर से जुड़ी एक ऐसे समय की, एक ऐसे इंसान की जो कि अपने पैशन ढूंढने को निकलता है. ये जो लड़का है ये कॉर्सिका नाम की एक जगह पर जाकर एक लड़की से मिलता है और वहाँ से इनकी कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है. धीरे धीरे ये जो मुलाकात है ये उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ एक्टिंग, थिएटर, कल्पना और भावनाएँ मिलकर उसे खुद से मिलाती हैं. तो अब आपको अंदाज लगाना है कि ये फिल्म कौन सी है. एक और हिंट आपको दे देती हूँ, इसी फिल्म में एक गाना है जिसका नाम है तू है कोई और. आपको बता दूं कि इस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाया है हाल ही में उनकी एक नई फिल्म भी आई है. तो चलिए, मैंने आपको खूब सारे हिंट्स दे दिए हैं, अब आपको मुझे अपना जवाब भेजना है 04397997677 पर. और भी खूब सारी बातें हम आज के कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया में आखिर क्या कुछ चल रहा है. प्रस्तुत है 25 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. सबसे पहले बड़ी खबर दक्षिण अमेरिका से. वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है. राजधानी काराकास में कई इमारतें ढह गई हैं जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इन भूकंपों की तीव्रता 7.1 और 7.5 मापी गई है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं. वहीं लोग डर के कारण घरों से बाहर सड़कों पर ही डटे हुए हैं क्योंकि आफ्टरशॉक्स का खतरा बना हुआ है. ऐसे में अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. इस्लामिक स्टेट से कथित रूप से जुड़ी एक ऑस्ट्रेलियाई महिला जो कई सालों से सीरिया में फंसी हुई थी, अब देश वापस लौट सकेगी। ऐसे में गृह मंत्री टोनी बर्क ने कहा है कि उनके अनुरोध के बाद टेम्पररी एक्सक्लूजन ऑर्डर को आगे जारी नहीं रखा जा सकता है। हालांकि वापसी के बाद उस पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी जाएगी। उसे अपनी लोकेशन, काम और पढ़ाई की जानकारी देनी होगी और किसी भी फोन या सोशल मीडिया इस्तेमाल से पहले 24 घंटे का नोटिस देना होगा। एएसआईओ प्रमुख माइक बर्जेस ने कहा है कि एजेंसी उसकी वापसी पूरी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के बाद ही करेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमरीका और नाटो के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो प्रमुख मार्क रटे के साथ रक्षा खर्च को लेकर मतभेद जताया है। ट्रंप ने कहा है कि कई यूरोपीय देश अभी भी अपनी रक्षा जिम्मेदारियों में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं और अमरीका पर अत्यधिक निर्भर हैं। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की हाउसिंग मार्केट पर। अब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था से बड़ी खबर आ रही है कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार ब्रिस्बेन आने वाले वर्षों में सिडनी को पीछे छोड़कर देश का सबसे महंगा शहर बन सकता है, खासतौर पर यूनिट्स के मामले में। डोमेन के अनुसार 2027 तक ब्रिस्बेन में मीडियन यूनिट प्राइसिंग लगभग $8,93,000 तक पहुंच सकता है, जबकि सिडनी में ये करीब $8,55,000 रहने का अनुमान है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन इंक्रीज, निवेशकों की बढ़ती रुचि और सीमित रेंटल सप्लाई इसकी बड़ी वजह हो सकती है। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में चल रही हलचल के बारे में। दो टील इंडिपेंडेंट सांसद जैली स्टेगल और एलेग्रा स्पेंडर ने मिलकर एक नई सेंट्रिस्ट पार्टी की घोषणा की है, जिसका नाम है कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया। खास बात यह है कि ये पार्टी किसी एक नेता के बिना काम करेगी, यानी एक साझा नेतृत्व मॉडल के तहत आगे बढ़ेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसी एएसआईओ अपने टेरर थ्रेट वार्निंग सिस्टम की समीक्षा कर रही है। एएसआईओ प्रमुख माइक बर्जेस का कहना है कि मौजूदा सिस्टम अब बदलते सुरक्षा हालात को पूरी तरह नहीं दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा प्रोबेबल खतरे का स्तर जनता के लिए वास्तविक जोखिम को कम करके दिखा सकता है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने एक फ्रांसीसी महिला और उसके 5 बच्चों को 10 साल से अधिक कथित कैद से मुक्त कराया है। महिला को एक बंद कमरे में पाया गया, जहां से उसके एक बेटे ने भागकर मदद मांगी थी। पुलिस का कहना है कि महिला ने वर्षों तक शारीरिक और मानसिक शोषण झेला है। उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिवार को फ्रांस वापस भेजने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। आइए बात करते हैं खेल जगत की। सॉकरूस टीम को बड़ा झटका लगा है। कोच टोनी पॉपोविक ने पुष्टि की है कि जेकब इटालियानो चोट के कारण अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। आपको बता दूं कि पहले ही मैट लेकी घायल हैं, जिससे टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर पैरागुआ के खिलाफ आने वाले मुकाबले से पहले। आइए बात करते हैं भारत की। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975 से 1977 की इमरजेंसी को शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी ऐतिहासिक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि ये पहली बार है जब कक्षा 9 के स्तर पर इमरजेंसी पर अलग चैप्टर जोड़ा गया है। आपको बता दूं कि ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत ने हाल ही में इमरजेंसी लागू होने के 50 साल पूरे होने को याद किया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। अमेरिका के सीनेट में वॉर पावर बिल्स पारित होने के बाद अब ईरान के खिलाफ किसी भी आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी नबील हसन की ये रिपोर्ट।
3: अमेरिका के सेनेट ने एक वॉर पावर बिल्स पारित किया है, जिसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकना है। यह ऐसे समय में हुआ है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ईरान की परमाणु निरीक्षण यानी न्यूक्लियर इंस्पेक्शन के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर मतभेद बने हुए हैं। वहीं यूनाइटेड नेशंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते फंसे हुए नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया है। इस बीच यूनाइटेड नेशंस की एक जांच में पाया गया है कि इजरायली अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन में बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया है। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। ये बिल 50 के मुकाबले 48 वोटों से पारित हुआ है। इससे पहले ऐसे 9 प्रयास किए गए थे, लेकिन पहली बार इस तरह का बिल कांग्रेस के दोनों सदनों से मंजूरी हासिल करने में सफल रहा है। बिल के तहत राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस की अनुमति लेनी होगी। सेनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से जुड़ी कार्रवाइयां अमेरिका के लिए काफी महंगी साबित हुई हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए।
4: मैडम प्रेसिडेंट, फॉर इयर्स Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the cost to the American people go up.
3: 4 Republican सांसदों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। वो उन बढ़ते हुए कंजर्वेटिव नेताओं में शामिल हो गए हैं जो युद्ध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ किए गए हालिया समझौते को लेकर चिंता जता रहे हैं। ये प्रस्ताव एक कॉन्करेंट रेजोल्यूशन है जिसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती और ये कानून की तरह लागू भी नहीं होता। लेकिन हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के डेमोक्रेटिक सदस्य ग्रेग मीक्स का कहना है कि वो सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रंप प्रशासन कांग्रेस की इच्छा का पालन करे। डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज का कहना है कि पेंटागन द्वारा युद्ध की लागत को कवर करने के लिए हाल ही में अरबों डॉलर की मांग करना इस अभियान की विफलता को दर्शाता है।
5: Their reckless and costly war of choice has been a disaster for the American people. And the notion that they'll come up to Capitol Hill to try to get an additional $80 billion to continue to waste taxpayer money on an endless war in the Middle East that Donald Trump promised he wouldn't start but would stop is beyond reckless.
3: सेनेट का ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ईरान के परमाणु निरीक्षण यानी न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस को लेकर मतभेद जारी हैं। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि देश के बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने दावा किया है कि ये मुद्दा उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शामिल नहीं था जिस पर अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।
6: I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities to defend ourselves, our country would have been plundered and destroyed. We shall never compromise or negotiate with anyone about our missile capability.
3: जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को परमाणु निरीक्षण करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर तेहरान इस समझौते से पीछे हटता है तो वो बातचीत खत्म कर देंगे।
7: And we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
3: ये मतभेद पिछले हफ्ते 18 जून को हुए US ईरान डील के बाद सामने आया है, जिसके बाद 60 दिनों की बातचीत की अवधि शुरू हुई थी। इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि ईरान कम से कम 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को बिना किसी शुल्क आवाजाही की अनुमति देगा और 30 दिनों के भीतर सभी समुद्री यातायात को पूरी तरह सामान्य करेगा। अब यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की है कि एक एवैक्यूएशन योजना शुरू हो चुकी है जिसके तहत 11,000 फंसे हुए नाविकों यानी सेलर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित निकाला जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता स्टेफनी डुजारिक ने कहा है कि यह अभियान ईरान, ओमान, यूनाइटेड स्टेट्स और मैरिटाइम इंडस्ट्री के सहयोग से चलाया जाएगा।
8: The IMO Secretary General Arsenio Dominguez said IMO secured the necessary safety guarantees and thoroughly verified the conditions for safe navigation to support these operations. The operation marks a significant step towards alleviating the humanitarian impact of the crisis on thousands of seafarers who've endured months of uncertainty, months of unrestricted movements, and mounting welfare concerns.
3: United Nations ke ek swatantra aayog ki report mein Gaza yudh shuru hone ke baad se Palestine mein bachchon ke khilaf hui ghatnaon ki jaanch ki gayi hai. Report mein paya gaya hai ki mare gaye logon mein lagbhag 30% bachche the. Halanki इजरायली सरकार ने इन निष्कर्षों को खारिज करते हुए रिपोर्ट को डीपली फ्लॉड यानी गंभीर रूप से गलत बताया है और कहा है कि इसमें हमास की क्रूर रणनीतियों को नजरअंदाज किया गया है। जांच आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास मुरलीधर का कहना है कि सबूत बहुत स्पष्ट हैं और इन्हें नकारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच 20,000 से अधिक बच्चे मारे गए हैं और 44,000 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं।
9: The use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare, and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children.
3: SBS News की एंजेलिका वाइट की ये रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
2: तो दोस्तों इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आए थे नबील हसन और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, लौटकर हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहें SBS हिंदी।
10: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits,

0: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: SBS Audio.
2: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
3: यहीं जाओ दादिया. चुनबे हालम.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
7: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
9: sbs.com.au/audio.
10: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:18, और वैसे तो मेरे किसी भी शो में आप देरी से नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप आज के कार्यक्रम में ज़रा देरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप हमारा कोई भी अंश या कार्यक्रम SBS हिंदी की वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर सुन सकते हैं. इसके अलावा हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं, तो यदि आपने हमें वहां पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि खासकर इंस्टाग्राम पर हम एक नए अंदाज में कई बार वीडियो के माध्यम से या फिर तस्वीरों के माध्यम से आप तक ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की खबरें लेकर आ रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की. तो लोवी इंस्टीट्यूट के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चरलिज्म के लिए समर्थन कम हो रहा है. ऐसे में हमने बात की कृष्णदेव सिंह रावल जी से, जो औपचारिक एंटी रेसिज्म वर्कशॉप्स आयोजित करने वाली संस्था थर्ड कल्चर ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक हैं, और समझा कि इस घटते समर्थन के पीछे का कारण क्या हो सकता है.
11: लो इंस्टीट्यूट के एक नई रिपोर्ट में यह पाया गया है कि मल्टीकल्चरलिज्म ऑस्ट्रेलिया में अब उत्तरान पर आ रहा है. लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म ऑस्ट्रेलिया के लिए उतना अच्छा नहीं है, जहां 2024 के इसी सर्वेक्षण में पाया गया था कि 90% लोगों को ऐसा लगता था कि सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी है. अब ऐसा सिर्फ 73% लोग मानते हैं, और उसमें भी 55% का ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय प्रवासन यानी इमिग्रेशन यानी माइग्रेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है. इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णदेव सिंह रावल जी, जो कि एंटी रेसिज्म में प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के स्पेस में काफी काम कर रहे हैं, और थर्ड कल्चर ऑस्ट्रेलिया नाम की एक संस्था के संस्थापक हैं. तो सबसे पहले कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी में.
12: थैंक यू, नमस्ते.
11: कृष्णा, हम समझना चाहते हैं कि लो इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है मल्टीकल्चरलिज्म पर, इस पर आपका क्या कहना है?
12: आई थिंक मैंने जो देखा वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप डाटा में देखो तो स्टैट्स कहते हैं कि 3 in 10 पीपल यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज से बोर्न है, और फिर आप एक और पीढ़ी डालते हो 1 extra generation, देन 1 in 2 पीपल हैव एटलीस्ट 1 parent बोर्न ओवरसीज. सो हम रियलिटी देखो तो हम बहुत डाइवर्स है, वी आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वी आर वेरी वेरी मल्टीकल्चरल. तो इट इज इन अ वे इट इज डिसहार्टनिंग के वो रेट है वो आई गेस गोन डाउन ऑफ हाउ पीपल व्यू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. बट आई थिंक आप देखो तो द वर्ल्ड अभी बहुत डिफिकल्ट फेज में है. वी हैड पेंडेमिक, आई थिंक उसका अभी भी इफेक्ट है, और फिर इकोनॉमिकली हाउसिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, और फिर इज अ लॉट ऑफ वॉर्स हैपनिंग, और फिर एआई भी नया है, तो पीपल को डर है कि मेरी जॉब जाएगी, ये जाएगी. सो आई थिंक जब आप देखते हो इकोनॉमिक प्रेशर होते हैं, आप फिर देखते हो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, आई थिंक पीपल यूजली व्हाट माय इंटरप्रिटेशन इज कि वो देखते हैं कि How do I preserve myself? मैं किस कैसे बचा सकता हूँ. आई थिंक देखोगे ये रेट में को 90 से 73 पीपल व्यू डाइवर्सिटी इंक्लूजन मल्टीकल्चरलिज्म अच्छे लाइट में. आई थिंक दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिविंग इन. अब दुनिया में देखो सब जगह कंजर्वेटिव जा रहे हैं, अमेरिका देखो, इंडिया देखो, लॉट ऑफ प्लेसेस आर गोइंग अ बिट मोर कंजर्वेटिव. एंड आई थिंक व्हेन पुश कम्स टू शव ऑफ सब प्रेशर्स आते हैं, सबको खुद का घर प्रोटेक्ट करना है. एंड आई थिंक द इजीएस्ट थिंग टू डू ऑस्ट्रेलिया में जब ये सब चीज चल रही है, तो देखो कौन माइनॉरिटी है, कौन यहाँ के नहीं है, कौन हमारे जैसे नहीं देखते, कौन मेजोरिटी में नहीं है.

0: It's very easy to point the fingers and be like, "What are the problems here?"
1: तो कृष्णा एक और चीज आती है कि आप एंटी रेसिज्म में प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं. पिछले 12 महीनों की अगर बात करें, जब हमने एंटी रेसिज्म का एक पूरा वेव देखा पिछले साल इसी समय के इर्द गिर्द, उस समय से अब तक लेकर के आपने जिन लोगों को ट्रेन किया है उनके किस तरीके के सवाल रहे हैं, या आपके अनुभव में क्या लोगों के सवाल बदले हैं ट्रेनिंग के दौरान?
0: पीपल्स परसेप्शन जब ट्रेनिंग में आते हैं, 2-3 साल पहले बहुत एक्साइटेड थे, वी वांट टू लर्न क्या करना चाहिए, क्या रेसिज्म होता है. अब आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस, इज अ बिट मोर पॉलिटिकली चार्ज्ड. हम जब बोलते हैं, हम कंटेंट करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो वो ज्यादा सोचने लगते हैं. बिकॉज आप घर में जाओ, आप सोशल मीडिया में जाओ, न्यूज में देखो, तो अभी रेसिज्म और मल्टीकल्चरिज्म बहुत नेगेटिव लाइट में है. आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट्स चेंज इज जो मेंबर्स आते हैं हमारी ट्रेनिंग में, वो डबल थॉट्स होते हैं. They're not fully sold on the idea. Those 3 साल पहले people आ जाते हैं, वो learn करते हैं, वो very excited होते हैं. अब वो थोड़ा डरते हैं कि मैं करूँ कि ना करूँ, मैं बोलूँ कि ना करूँ. So that's the first change that I've seen. और दूसरी चीज है कि जो people आते हैं वो they all ask the what is the political situation. मैं करूँ मैं job placement, should I speak up, should I not do it? Oh, I'm seeing more and more people would have defeated feel करते हैं कि racism है, exist, but मैं कुछ नहीं कर सकता. I can't do anything about it. आप politically देखो, it's not in a good light. And if I speak from an Indian perspective, मैं Indian हूँ, और you know, right now if you go on social media, racism against Indians बहुत normalized हो चुका है. It's very, very common. People think it's easy to make jokes on us to marginalize the community. So I think the Indian community, I know in particular, वो mention तो नहीं करेंगे struggle, but they feel it. The transition in my trainings has been वो doubt करते हैं content को, वो doubt करते हैं कि ये सही चीज है कि नहीं. हमको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, हमको कदम लेना चाहिए कि नहीं, हमको रेसिज्म आपको डिफीट करना था, आप यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू टेक दैट स्टेप. आई थिंक नाउ एंड नाउ पीपल आर मोर हेजिटेंट, क्योंकि पॉलिटिकली नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की बैकिंग नहीं है, और द होल राइट नाउ DNI और डाइवर्सिटी इंक्लूजन इज नॉट सीन इन अ गुड लाइट, एंड द स्टैट्स हमने आज आपने वो बोले वो बैक दैट करते हैं.
1: कृष्णा, गैप कहाँ दिखता है आपको? आपको क्या लगता है कि कहाँ है वो गैप जिसकी वजह से ये जो फीलिंग है, जहाँ अब ये भावना आने लग गई है कि हम बोल नहीं सकते, हम महसूस कर रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते, ये कहाँ से आ रही है?
0: आई थिंक आप सोशल मीडिया में देखो, आप डेली कॉन्वर्सेशंस देखो, हम सी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज वेरी स्ट्रांगली अपोज, मैं क्लियर करके अपोज नहीं, वो ब्लेम करते हैं कि ये माइग्रेंट्स के लिए हुआ है, ये रेफ्यूजीज वजह से हुआ है, ये इतना ज्यादा नई पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा दैट्स द रीजन व्हाई वी आर हैविंग सम इश्यूज. सो आई थिंक व्हेन दैट इज बिकमिंग नॉर्मलाइज्ड, रेगुलर सुनते हैं, देखते हैं, देन इट गिव्स पीपल हु माइट बी ऑन द एज, हु दे वोंट बी फील कॉन्फिडेंट टू कम आउट एंड से अ बिट मोर रैपिड थिंग्स, टू कम आउट एंड बी अ बिट मोर वोकल, बिकॉज दे सी पॉलिटिशियंस सेइंग इट, दे सी इट ऑन द न्यूज, दे सी सर्टेन सेलिब्रिटीज यूज इट. सो आई थिंक दैट्स बिकमिंग द इश्यू ऑफ इट्स बिकमिंग मोर नॉर्मलाइज्ड. If I was facing racism with another person, वो comfortable नहीं होगा कि I should speak up, क्योंकि TV में तो ये देख रहा हूँ that they're blaming me, तो मैं कहाँ से बोल सकता हूँ? Especially आप layers में डालो कि आपकी citizenship नहीं है, आप international student हो, इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो आप financially secure नहीं हो. When you add all these layers in, it becomes very difficult for a person to speak up.
1: कृष्णा, ऐसे में आपके अनुसार, और खासकर जब इस तरीके के सर्वे सामने आते हैं, तो किस तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज एक करी जा सकती है, या किस तरीके से एक मिडिल ग्राउंड पर पहुंचा जा सकता है?
0: वी हैव टू डेवलप सम एम्पैथी. आई थिंक एज लीडर्स, एज आई गेस समवन वर्किंग इन द स्पेस, वी हैव टू गिव स्पेस कि ये ओपिनियंस हो सकते हैं. पीपल कैन फील दिस वे, वो जो आप सोच रहे हो फील करते हो, we can't tell that's a bad feeling, ye mat socho. So I think first step is saying, okay, where is this thinking coming from, ye kahan se aa rahi hai. Second is to build empathy, ke are they misinformed. So I think understanding those things, and the next step, I think it's very important for leaders like myself or the political leaders to make sure we have strong leadership. It's never been more important, ke we need to have strong leadership, ke this is correct, this is wrong, just make that vocal, and as jahan bhi ho sakta hai, make it as clear that whatever is happening in the streets, jahan bhi ho sakta hai, in social media, on TV, hum nahi accept karte hai.
1: आपको बताते चले कि ये सर्वेक्षण किया गया था वन नेशन की नेता पॉलिन हैंसन नेशनल प्रेस क्लब को दिए गए संबोधन के कुछ दिनों बाद ही. इसके बाद प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि दरअसल सांस्कृतिक विविधता ऑस्ट्रेलिया की ताकत है.
2: diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month, Sunday, I was at an Assyrian function. It was a wonderful function in southwestern Sydney. Should that be allowed to happen?
1: लेकिन सेनेटर हैंसन ने इस बात का सीधा सीधा जवाब देते हुए ये कहा था कि इस समय ब्रिटेन में चल रही पॉलिटिकल अपहीवल यानी राजनीतिक उथल पुथल सीधे सीधे कल्चरल डाइवर्सिटी का ही नतीजा है.
3: बिग इश्यू इन ब्रिटेन दैट आई कैन से इज अबाउट द मैस माइग्रेशन पीपल कमिंग इन द कंट्री. पीपल डोंट फील दे ब्रिटिश एनीमोर, दे कांट फ्लाई द फ्लैग, एंड आई सी द सेम थिंग हैपनिंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया. सो ही वांट्स टू टेक अ फ्यू लेसंस फ्रॉम दैट. आवर इकॉनमी इज इन द टॉयलेट एक्चुअली.
1: इस सितंबर में पॉलिन हैंसन के प्रथम संसदीय संबोधन के 30 वर्ष होंगे. उन्होंने उस संबोधन में भी मल्टीकल्चरलिज्म को खत्म करने की बात कही थी.
4: I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished.
1: नए सर्वेक्षण ऐसा दिखाते हैं कि हो सकता है अब इस भावना को समर्थन मिलने लगा हो. रेनी कॉफी उस समय एक किशोर थे जब पॉलिन हैंसन ने अपना प्रथम संसदीय संबोधन दिया था. आज वे खुद एक सांसद हैं और कहते हैं कि पॉलिन हैंसन की पॉलिसीज देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.
5: I'm in federal parliament. I can't believe 30 years on, we're still talking about Pauline Hanson. We're still talking about One Nation. That's very upsetting to me and so many members of our community. What I would say is with Pauline Hanson and One Nation's rise in the polls and what we've seen in the community, I would ask people to have a look at her track record, to look at her track record and One Nation's track record. Over the last 30 years in parliament, they have consistently voted against higher wages for workers, workers' rights.
1: इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है. SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत. इस खबर को SBS न्यूज से आपके लिए प्रस्तुत किया कैमिल बियांकी और SBS हिंदी से विशाली जैन ने.
6: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ऑस्ट्रेलिया में मल्टी कल्चरलिज्म को लेके जो एक डिबेट है वो शुरू हो गई है. तो इस पर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे लिख भेज सकते हैं. नंबर है 04397997667. चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा. लौट कर आपको मिलवाऊंगी नाट्य दर्पण जो थिएटर ग्रुप है उसके कुछ सदस्यों से. सुनते रहें SBS हिंदी.
7: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: No, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। मैंने पूछा है कि ये कौन सी फिल्म है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो कहानी है, ये है एक लड़के की जो खुद को खोज रहा है, अपनी पहचान, अपनी आवाज़ और अपनी असली पैशन की तलाश में। ये लड़का कॉर्सिका नाम की एक जगह पर एक लड़की से मिलता है और वहाँ से कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। धीरे धीरे ये मुलाकात उसे एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाती है जहाँ अभिनय, थिएटर, कल्पना और भावनाएं मिलकर उसे खुद से मिलाती हैं। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ? उसी फिल्म में एक गाना भी है, तू है कोई और। बताएं मुझे अपने जवाब। नंबर है 04397997667। और जब तक आपके जवाब मेरे पास आ रहे हैं, आइए आपको मिलाती हूँ कुछ लोगों से। तो नाट्य दर्पण इंडियन थिएटर एकेडमी मेलबर्न का एक ऐसा भारतीय थिएटर ग्रुप है जो सिर्फ नाटक नहीं करता बल्कि कहानियों को जीता है और लोगों को जोड़ता है। यहाँ ये मंच पर अभिनय के साथ साथ वर्कशॉप्स, संगीत, लाइट, साउंड और ढेर सारी क्रिएटिव एनर्जी भी साथ चलती है। नाट्य यानी रंगमंच और दर्पण यानी आयना, ऐसा मंच है जो जिंदगी को उसके असली रंग में दिखाता है। इस खास प्रस्तुति के पहले हिस्से में मैं आपको मिलवाऊंगी इस संस्था के संस्थापक और OAM सम्मानित मंदार वैद्य से और जानेंगे इस थिएटर ग्रुप की कहानी, आने वाले धमाकेदार शोज के बारे में और थिएटर की आज की प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस के बारे में। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेलबर्न की मल्टीकल्चरल पहचान को मजबूत बनाने में कला और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय समुदाय के बीच रंगमंच को जीवंत बनाए रखने का ऐसा ही प्रयास है नाट्य दर्पण इंडियन थिएटर एकेडमी। पिछले दो दशकों से अधिक समय से ये संस्था न केवल भारतीय भाषाओं और कहानियों को मंच पर ला रही है बल्कि नए कलाकारों को भी अवसर प्रदान करती है। थिएटर के माध्यम से संस्कृति यानी कल्चर, आइडेंटिटी और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले इस सफर के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं नाट्य दर्पण के संस्थापक और रंगकर्मी मंदार वैद्य जी। इसके अलावा इसी थिएटर ग्रुप से जुड़े एक कलाकार नमन अरोड़ा से भी हम बातचीत करेंगे, जो हमें बताएंगे कि कैसे थिएटर के माध्यम से आत्मविश्वास तालियों में बदल जाता है और क्यों थिएटर आज भी सोशल मीडिया की दुनिया से कहीं ज्यादा लाइव और जिंदा अनुभव है।
13: SBS हिंदी को भी हमारा तहे दिल से नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
6: तो मंदार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नाट्य दर्पण की स्थापना के पीछे आपकी क्या सोच थी?
13: नाट्य दर्पण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, यहाँ हिंदी नाटकों की एक कमी थी जब हमने शुरू करा तब, तो उन हिंदी नाटकों की एक नींव रखना और उनके निर्माण के माध्यम से भारतीय रंगमंच को बढ़ावा देना और ऐसा एक रंगमंच तैयार करना कि जहाँ सारे जाति, धर्म, वर्ग के लोग सारी सीमाओं को तोड़कर एकजुट हो जाएं। और यही मतलब हम कर पाए हैं कि आज तक हमारी संस्था में 4 साल के बच्चों से लेके 80 साल के बुजुर्गों तक पिछले 10 सालों से
6: जी
13: 50 से अधिक नाटकों के माध्यम से हम ये निर्माण कर चुके हैं और आज तक 150 कलाकार, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, संगीतकार, गायक और डांसर्स, ऐसा एक बहुत प्यारा सा एकजुट परिवार हम बना सके हैं।
6: बिल्कुल मंदार जी, अभी आपने बताया कि नाट्य दर्पण को 10 साल हो जाएंगे, तो ऐसे में आप अपना एक खास शो भी लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को उस शो के बारे में कुछ बताएं।
13: तो अभी 10 साल की सालगिरह के कारण इसका नाम ही हमने दशकोत्सव रखा है और इसमें हमने क्लासिक मतलब यानी कि कुछ पुराना कुछ नया ऐसे दोनों का एक बहुत रंगीन सा एक संगम इसमें किया है। तो पहला शो शो हुआ 20 तारीख को, उसमें एक बच्चों का नाटक था और जिसका नाम था दिस टाइम यू डिसाइड क्रीमिया, और शादी सिलेबस नाम का एक बहुत ही हिलेरियस कॉमेडी एक दीर्घांकी नाटक था जो सवा घंटा चला। और आने वाले 27 तारीख को जो है वो हम चैंडलर थिएटर में एक बहुत ही सशक्त और इमोशंस का पावर हाउस जिसे कह सकते हैं हमीदा बाई की कोठी नाम का एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो संगीत और तवायफ और कोठी संस्कृति के बदलते दौर का एक मार्मिक और क्लासिक वो एक उदाहरण है जिसको लिखा है श्री अनिल बर्वे जी ने और जिसको निर्देशित किया है और जिसमें मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं श्रीमती नम्रता शर्मा जी। इस साल दशकोत्सव में 56 प्रतिभाशाली कलाकार, 6 डायरेक्टर्स और 6 नाटककार, ऐसा एक अनोखा संगम हमें देखने को मिला। एक हटके एकदम जिसको कहते हैं कि क्लासिक एपिटोमी ऑफ इमोशंस एंड प्योर ड्रामा, ये स्टेज पे 8 किरदार उनको बखूबी निभाएंगे।
6: जानना चाहूंगी कि जो नाट्य दर्पण है वो क्या केवल मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के लिए एक मंच है या फिर ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद का भी माध्यम बन रहा है?
13: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ये हमारा मंच जो है वो एक सामाजिक और नाटकीय दोनों का एक मिलाप है। सामाजिक ऐसे कि हम हमेशा ऐसा हम ऐसे सोच रखते हैं कि हम यहाँ पे अच्छी जिंदगी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम जो भी करें हमारे नाटक करें उसमें से समाज को कुछ वापस दे। तो मनोरंजन के साथ साथ पिछले 10 सालों में हमने $32,000 से अधिक की धनराशि मतलब जुटाई है, वी हैव रेज्ड फंड्स
6: जी।
13: और दशकोत्तर के लिए ये दशकोत्सव जो हमारा इस साल का है, फॉर दैट अलोन वी हैव रेज्ड $7,000 जो फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन फाउंडेशन, ये हमारे चैरिटी पार्टनर्स हैं, इनके पास जाएगा और वो बहुत ही अच्छे हाथों में जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन फाउंडेशन के हमारे दोस्त जो हैं वो जनरली चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के लिए कोई बड़ा इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो और सामाजिक इसके लिए मैं बोलता हूँ और एक एक दृष्टिकोण से कि हम हमेशा नाटकों के माध्यम से एक अच्छा कुछ विचार, एक वैचारिक मंथन हम लोगों में लाना चाहते हैं क्योंकि आजकल 30 सेकंड और 40 सेकंड के रील में अटके हुए हमारे सारे लोगों के दिमाग है ना
6: जी।
13: मतलब उससे कोई भी परे नहीं है, ना आप है ना हम है, तो उससे बाहर निकलने के लिए ये जीते जागते किरदारों को देखने के लिए उनकी जो जो उनके इमोशंस हैं उनको एक्सपीरियंस करने के लिए लोग आ सकते हैं। और थॉट प्रोवोकेटिंग नाटक थे सारे, मतलब हमीदा भाई की कोठी भी एक बहुत, लोग जब जाएंगे वहां से तो एक बहुत सोच एक सोचना पड़ेगा लोगों को कि क्या ये सिर्फ हमीदा बाई और उनकी कोठी और उनकी जीवन के बारे में ही नाटक है कि इससे आगे चल के ये कुछ वैचारिक मंथन भी करता है हमारे दिलो दिमाग में।
6: जी बिल्कुल मंदार जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि ये रीलों का एक दौर है, तो खासकर जो युवा पीढ़ी है और अगर मैं जेन जी या जेन अल्फा की बात करूं तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस पीढ़ी ने अनुभव की ही नहीं है। यू नो, सब कुछ इतना ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गया है, इतनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी आ गई है, तो ऐसे में जहाँ नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया क्लिकबेट इन माध्यमों से हम मनोरंजन ले रहे हैं, तो आने वाले समय में लाइव थिएटर की प्रासंगिकता यानी जो रेलेवेंस है वो कितना रह जाएगा?
13: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल दुनिया जो है ना, जो सोशल मीडिया हम जो देखते रहते हैं सारे, वो अक्सर इंसान उसी के पास खींचा चला जाता है क्योंकि उसकी एक आदत सी लग जाती है, उसकी एक लत सी लग जाती है ना
6: जी।
13: क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस आप पढ़े रहो और वो रील्स आते जाते हैं और उसको जो इंग्लिश में जो कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब एक क्षणिक आनंद की जो अनुभूति दिलो दिमाग पर छा जाती है। कुछ ना करते हुए 30 सेकंड के अंदर। तो ये सारे से हटकर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिनको वही अनुभव कुछ दूसरे काम से मिले। और नाटक, नाटक के वर्कशॉप्स, नाटकों की तालीम, ये जरूर एक ऐसा रंगमंच है कि जहां पे लोग ये सोशल मीडिया तो भूल ही जाते हैं मगर अपने आप को भी भूल जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि नाटक इज ए मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, यानी ये एक आध्यात्मिक एक एक्टिविटी है। अभी टोटल हमारी वॉलंटियर के लिस्ट में इस शो के लिए 56 तो सिर्फ एक्टर्स है ना, फिर डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सारे मिला के 92 है। और ये सब एक साथ जब पसीना बहाते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं, यू नो इट्स लाइक ए लिटिल फैमिली गेट टुगेदर एवरी वीकेंड। और ये ऊर्जा और ये सामूहिक जो एक विचार है और ये जो सबको एक साथ लेकर आता है ना, वो ये तो किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं मिलता।
6: बिल्कुल मंदार जी, आपका आज SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
13: आपको भी फिर से हमें ये स्वर्णिम मौका देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार। तो आपको भी और आपके श्रोताओं को भी हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि आप आइए और हमारे कुटुंब में हमारा ही एक भाग बन जाइए।

तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये अंश पसंद आया होगा और इसका दूसरा भाग आप तक जल्द लेकर आऊंगी। लेकिन आज के मेरे सवाल का जवाब आपको बता देती हूँ। आज मैंने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कहानी है एक लड़के की जो खुद को खोज रहा है, अपनी पहचान, अपनी आवाज़ और अपनी असली पैशन के तलाश में। ये लड़का कॉर्सिका नाम की एक जगह पर एक लड़की से मिलता है और वहाँ से इनकी कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। धीरे धीरे ये मुलाकात उसे एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाती है जहाँ अभिनय, थिएटर, कल्पना और भावनाएं मिलकर उसे खुद से मिलाती हैं। आपको पता लगाना था कि ये कौन सी फिल्म है और मुझे सिर्फ एक ही सही जवाब आया है, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। तो अगर आप मुझे एक संदेश भेज सकते हैं तो अपना नाम मुझे ज़रूर बता दें। और फिल्म का नाम है तमाशा। ये गाना उसी फिल्म से है और आपको बता दूं कि हिमलता पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लिखती हैं, नमस्ते भव्या जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, और बता रही हैं कि वो पॉलिन हैंसन के जो बयान हैं मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर उनसे खास अग्री नहीं करती हैं। कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में अभी है नहीं और वी आर गिविंग अ लॉट टू ऑस्ट्रेलिया। ये उनके निजी विचार हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो हिमलता जी आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ पीयूष जी जुड़ गए हैं और लिखते हैं, नमस्ते भव्या जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पीयूष जी, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये प्यारा सा गाना आप इंजॉय करें।

तो दोस्तों, क्योंकि ये गाना चलाया है तो आपको बता दूं कि इस गाने की जो सिंगर हैं अलका याग्निक, जो बहुत ही एक पॉपुलर सिंगर हैं, उन्हें हाल ही में भारतीय पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जहां पर वो अवार्ड लेने पहुंची। और इसकी जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, क्योंकि बहुत ही इमोशनल ये एक मोमेंट था। आपको बता दूँ कि कुछ ही समय पहले उनकी जो हियरिंग है उसमें ज़रा सी प्रॉब्लम आ गई थी और अब वो सुन नहीं सकती हैं। तो देखिए ये कितनी ज़िंदगी कितनी अलग है कि जिसने पूरी ज़िंदगी हमें गाना सुनाया, एक पल आया जहाँ वो खुद ही अब ढंग से नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन उनको ये अवार्ड मिला और सोशल मीडिया पर हर जगह जो नई जनरेशन है, पुराने लोग हैं, उन्होंने अलका याग्निक को याद किया। तो आज ये गाना उन्हीं के लिए।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with GEICO's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
4: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो जो गाना मैंने अभी बजाया था, उसको लेकर मुझे खूब सारे मैसेजेस आ गए हैं, जो कि जल्द पढ़ूंगी। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाती हूँ एक खास मेहमान से। तो ब्रेक से पहले मैंने आपको मिलवाया था नाट्य दर्पण के संस्थापक के साथ, जिनका नाम है मंदार वैद्य, और कई सालों से वो ऑस्ट्रेलिया में हिंदी और मल्टीकल्चरल थिएटर को लेकर आ रहे हैं। और अब इस अंश के दूसरे हिस्से में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आर्टिस्ट नमन अरोड़ा से, जो बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ थिएटर करने की ठानी और भारत से बाहर रहकर अपने पैशन को फॉलो किया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थिएटर की, और इस खास प्रस्तुति के पहले हिस्से में हमने आपको मिलाया था नाट्य दर्पण के संस्थापक और OAM विजेता मंदार वैद्य से। आइए इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और अब आपको मिलवा रही हूँ इस थिएटर ग्रुप से जुड़े कलाकार नमन अरोड़ा के साथ। नमन हमारे साथ अपना नाट्य दर्पण से जुड़ने का अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अपनी 9 to 5 करने के साथ साथ उन्होंने अपने पैशन को परस्यू करने का ठाना।
6: हमेशा से मैं थिएटर और ये ड्रामा एंड इन सब में रहा हूँ, स्पेशली जब मैं बड़ा हो रहा था स्कूल में एंड कॉलेज में, बैचलर्स में। उसके बाद जब हम 2018 में मैं यहाँ पे आया, ऑब्वियसली बिजी हो गए फ्रॉम काम, धंधा एंड यू नो जॉब एवरीथिंग, तो ये सारी चीजें छूटी गई, विच मीन्स आर्ट वॉज नेवर इन द पिक्चर। पर उसके बाद 2023 व्हेन एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, मेरी PR हो गई, सब कुछ हो गया, जॉब अच्छी थी, स्टेबल था एंड एवरीथिंग, तो फिर अब अंदर की जो होती है ना एक चुल होती है कि भाई अब अलग कुछ अलग मसाला चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है उसी को वापस उठाते हैं जो हमेशा पहले करते थे। फिर मैंने सोचा कि गूगल करा कि मैंने कहा कि अगर हिंदी में ही हो जाए तो इट्स गुड कि आई कैन बी मोर कनेक्टेड टू द कल्चर एंड ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस भी है, आदत भी है, मजा भी आता है। तो गूगल करा तो ऑब्वियसली नाट्य दर्पण का नाम ऊपर आया, मैंने रिव्यूज वगैरह पढ़े, उनके फेसबुक पे गया, देखा, समझा, मैंने कहा नहीं साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है। और ऐसा भी नहीं था कि वो नया नया था, इन 2023 उसमें लिखा था कि 7-8 साल हो चुके थे, तो मैंने कहा ठीक है दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड थिंग, लेट्स ट्राई इट आउट। तो वहाँ पे फॉर्म वॉर्म भरा एंड देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, एंड देन मंदार जी का मेरे पे कॉल आता है जस्ट नो कि मैंने क्यों करा है, व्हाट इज माय इंटेंशन, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, एंड ऐसे करके कितना टाइम मैं दे सकता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। मोर लाइक ब्रीफिंग प्री बिफोर दे टेक एनीबडी, एवरी टाइम दे टेक समबडी, किसी को भी जब इसमें लिया जाता है नाट्य दर्पण में, आपको एक वर्कशॉप में डाला जाता है जिससे आपका सारा थिएटर का जो बेसिक्स होता है ना, फ्रॉम स्टेज प्रेजेंस टू हाउ लाउड, वॉइस रेगुलेशन एंड एवरीथिंग, वो बेसिक्स सिखाए जाते हैं एक 2-3 दिन की वर्कशॉप में, जिसके अंदर कोई अगर एक बिगिनर जिसने कभी स्टेज पे पैर भी नहीं रखा है, उसका भी इतना क्लियर हो जाता है फंडामेंटल्स कि ही फील्स कॉन्फिडेंट इनफ टू शोकेस हिमसेल्फ। So anybody who gets into Natya Darpan as an academy, join them. They उन्हें ये सब एक workshop attend करनी होती है जो मंदार जी बहुत अच्छे से regulate करते हैं, सिखाते हैं. तो मैंने पहले एक workshop attend करी. उसके बाद since then अब 3 साल हो चुके हैं और मैं आई थिंक 4-5 अलग अलग प्रोडक्शन का पार्ट रहा हूँ. देखो कितनी बड़ी कमिटमेंट है. आप अपनी जॉब करते हो, आप सब कुछ करते हो, वीकेंड पे आपको टाइम निकालना है, वीकडे में टाइम निकालना है, जूम मीटिंग एंड ऑल दैट. मैं तो रहता भी नॉर्थ में हूँ, तो फॉर मी ट्रैवलिंग इज ऑल्सो 1.5 आवर वन साइड. बट एवरी टाइम आई डू समथिंग एंड इट्स सो मच फन. बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत लोगों से मिलने को मिलता है, एक परिवार वाली फीलिंग आती है. और करते टाइम ऐसा लगता है कि यार ये कितना एग्जॉस्टिंग था बट फन था. तो मैं सोचता हूँ कि यार ओके दिस टाइम आई डू इट, नेक्स्ट टाइम आई टेक अ ब्रेक बिकॉज इट इज टू मच ट्रैवलिंग, टू मच टाइम एंड एवरीथिंग. बट देन इतना मजा आता है कि नेक्स्ट टाइम हैपेंस एंड लाइक आई वांट टू डू इट अगेन. एंड दैट्स व्हाई मैंने देखा है कि जो लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेस के अंदर, ड्रामास के अंदर, वो पिछले 10-10 साल से लगातार काम कर रहे हैं. और ये सब करना, डूइंग योर जॉब विद नो सेल्फिश मोटिव, देयर इज नो फाइनेंशियल बेसिकली थिंग दैट यू आर परस्यूइंग हियर. कि आप कर रहे हो अपने शौक के लिए कर रहे हो, अपने पैशन के लिए कर रहे हो, अपने जिनके बच्चे हैं वो बच्चे मैनेज कर रहे हैं, जिनकी दो तीन जॉब्स है वो मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट मैनेज कर रहे हैं. तो ये सब एक आउटसाइड ऑफ देयर लाइफ दे आर डूइंग समथिंग एज अ मसाला. जब आप कोई प्ले देखते हैं या थिएटर देखते हैं, वो देखने में बहुत आसान लगता है कि क्या है, वो 200 डायलॉग हैं, 10 लोगों ने बोल दिए, क्या ही फर्क पड़ता है. बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन एंड जितना भी काम लगता है उसके अंदर, फ्रॉम योर लाइटिंग यू नो टू योर साउंड्स, टू योर मेकिंग श्योर स्टेज पे प्रेजेंस हो, उसके बाद कोई वर्ड कोई लाइन भूल जाए तो क्यूज भूल जाए, ये सबको मैनेज करना, इनके लोगों से कोऑर्डिनेट करना, प्लस जब भी कोई प्रोडक्शन होती है उससे 3 महीने पहले एवरी वीकेंड, अगर 8-10 दिन है तो 8-10 दिनों का मेक श्योर उनका टाइम कोऑर्डिनेट हो, हर वीकेंड किसी के घर मिलना या कोई जगह बुक करना, लाइक ऑल ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स बहुत बहुत एफर्ट.
5: तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो कार्यक्रम था वो पसंद आया होगा. और ये दोनों पॉडकास्ट आप हमारी SBS हिंदी की वेबसाइट पर जाकर फिर से सुन सकते हैं. जाने से पहले आपको बता दूं कि खूब सारे संदेश आए हैं तो जल्दी से पढ़ देती हूँ. तो आज के सवाल का सही जवाब एक ही इंसान ने दिया था जो है कुणाल जी. लिखते हैं थैंक यू एक्चुअली फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग फ्रॉम तमाशा एंड द फर्स्ट आंसर वॉज फ्रॉम मी एज वेल. आई वॉज ऑल्सो जस्ट वंडरिंग दैट could we have a day or a show just to dedicate it to Alka Yagnik ji, and so that you know she has recently won the legendary award and she's a legendary singer. To ye sandesh hame bheja hai Kunal ji ne, to aapke sandesh ke liye bahut bahut shukriya. Aur dekhiye aapne socha aur maine aapka gana baja diya. Aur record sandesh mujhe aaya hai Brajesh ji ka jo likhte hain hello Bhavya ji, thank you for playing this song. Aaj aapne meri sham bana di. Best wishes to the entire SPS टीम. इसके अलावा एक और संदेश मुझे आया है जफर जी की ओर से जो कि लिखते हैं भव्या जी वेरी गुड प्रोग्राम, कीप अप द गुड वर्क. तो आप सभी के प्यारे प्यारे संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ऑन एयर आते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं और आप हमारे साथ मैसेजेस के माध्यम से संवाद करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको हमारा साथ कैसा लग रहा है, हमारी रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं. और इसी के साथ आज बातें करते करते जो समय है वो बीत चुका है. फिर से हमारी मुलाकात होगी यहीं पर शाम के 5 बजे. लेकर आऊंगे आपके लिए कुछ बढ़िया सी खबरें और खूब सारे गाने. आप जुड़े रहें SBS हिंदी के साथ. और जाने से पहले ये गाना सुन के जाएं.

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

बिहार की, वो जा रहा है कोई शब्द गुजार की। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदासी,

After hit. This is SBS South Asian.

खुमो सागर उदास तुम क्या गए के रूप गए दिन बाहर।

है पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद है, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: जानदा नहीं मैनू, नेहा कक्कड़ा मैं।
1: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियां।

0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं हम

0: SBS South Asian.
1: Touch yourself.